सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: बिंदास अब सुनिए

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindaas. Cool song. Radio Olive par aane wala gaana Cool song of the hour. Song of the
2: hour. Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai? Cool song.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Tanisha. Tanisha. Beautiful track in the voice of Arijit Singh from the movie Didi Pyar De, only on Radio 106.3 FM. Tanisha Agiji, aapke saath bindas mornings lekar. A very good morning, meri jaan. Tuesday ka din hai, August 12th. Kaise hain aap? Kya hal chal hai? Kal ka din sab theek raha? तो बताइए, शुरू करते हैं. मेरे पास ऑलरेडी कुछ गुड मॉर्निंग मैसेजेस आ गए हैं प्यारे प्यारे. अभी बाकियों का इंतजार कर रही हूँ मैं. 3311 1063 इज द नंबर. वेरी ब्यूटिफुल ट्रैक एंड सिल्क. ये मोहित चौहान की आवाज में था. अनदर मोहित चौहान ट्रैक इज वेटिंग फॉर यू. ब्यूटिफुल सिल्क राउट से और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हिट हो जाए तो.
1: ओ मेरे दिल के चैन,
0: ऐसे आसानी से चैन आ जाएगा तो कैसे चलेगा. मजा ऐसे बरकरार ही रहना चाहिए पूरे 4 घंटे. ढेर सारी बातें करने वाले हैं हम, बहुत कमाल कमाल के गाने सुनने वाले हैं, पर शुरुआत आपसे ही होती है. ठीक है, तो 3311 1063 पर मैसेज कीजिए. क्या कर रहे हैं इस वक्त? अभी जागे हैं, रेडी हो रहे हैं काम के लिए, या फिर चिल कर रहे हैं, आज थोड़ा लेट जाना है, या फिर ऑलरेडी निकल चुके हैं और रास्ते में. सब जानना चाहती हूँ. देखो, मैं तो काम पे आ गई हूँ और मेरा काम है आपसे, तो अब आपके बारे में जानने की बारी है. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जी बिंदास मेरी जान.

0: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
1: क्या कैसे?
0: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
1: रोज मिलता है क्या?
0: हाँ रोज मिलता है।
1: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Akshay Kumar.
5: Hi, this is Anushka Sharma.
6: And I'm Arshan Vasi.
7: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जेसन निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha.
1: आप जैसा कोई मूवी से ब्यूटीफुल ट्रैक मोहित चौहान की आवाज में जब तू सजन ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और आइए मैसेजेस पढ़ते हैं. नाजनी जी का मैसेज आया है भाई, 258 पे भेजा था. नाजनी जी आप इतनी जल्दी क्यों उठ रही हैं? यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग. सही बात है. सो योर बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर लिविंग इज टू मेक द बेस्ट एंड मोस्ट पॉजिटिव यूज ऑफ द प्रेजेंट. गुड मॉर्निंग. एकदम करेक्ट बात बोली है. सुबह सुबह हमको कल की चिंता में आज को इग्नोर नहीं करने का, ठीक है? आज को इंजॉय करो, कल की कल देख ही जाएगी यार. संतु जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग, द डे इज सो ब्राइट एंड लवली, स्माइल एंड एम्ब्रेस दिस न्यू डे, न्यू थिंग्स एंड न्यू एस्पिरेशंस टू मेक अ न्यू वे. हैप्पी ट्यूसडे हरपाल संधु फ्रॉम द कंसेक्रेट. गुड मॉर्निंग टू यू टू संधु जी एंड अ वेरी हैप्पी ट्यूसडे एज वेल. शशिकांत पाटिल जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग, पीस लव एंड जॉय, मे दीज रिच ब्लेसिंग्स बी योर्स ऑन दिस वंडरफुल न्यू मॉर्निंग इंशाल्लाह. एंड we have got a good morning, a beautiful morning from Dr. Isaac. And he has sent me a picture that he is listening in his car. Drive very carefully because aap bahut important hai, theek hai? Yaad rakhni hai ye baat hamesha. Imran ka bhi message aaya hai, wishing a gorgeous morning to the girl who gives the morning rush our its rhythm and soul. Thank you. Good morning. Bilal ji ka bhi good morning aa gaya hai ji. So uth chuke hain kafi log aur jinhone abhi tak mujhe nahi bataya ki aap uth gaye ho, matlab ye attendance lagane wala time hai, theek hai? तो फटाफट से आओ और अपनी अटेंडेंस लगा दो 3311063 पर. फिलहाल सुनते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सिल्क रूट से डूबा डूबा. स्टे ट्यून ऑन रेडियो बिंदास. कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

इश्क विश्क से कुमार सानू और अलीशा चुनौती की आवाज में बड़ा ही सुंदर सा गाना ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। यार हम इंस्टाग्राम जब डूम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो सिर्फ ब्रेन रॉट कंटेंट ही नहीं आता है, कुछ ऐसी चीजें भी आती है जो कि हमें काफी सारी यू नो इम्पॉर्टेंट बातें रियलाइज करवा देती है। जैसे यस्टरडे आई वाज डूम स्क्रॉलिंग एंड आई लैंडेड ऑन अ कोट, ओके इट वाज फर्स्ट अ क्वेश्चन, फिर क्या सीखा जिंदगी से, इट सेज। और आगे लिखा है, सब कुछ सोचोगे तो सुकून खो दोगे, जो जरूरी है बस उसी पर ध्यान दो। एंड दैट इज सो ट्रू यार, मतलब ऑब्वियसली देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर लाइफ यू नो, देन देयर आर की जिनके बिना चल भी जाएगा, पर नहीं, हमने सबको समेट लेना है और सबके बारे में ओवरथिंक करना है कि यार वो जो चल भी जाएगा वाली जो एक कैटेगरी होती है उसमें से भी अगर कुछ चीजें नहीं हुई हमारे हिसाब से तो हम उसके बारे में बैठ के भी पॉन्डर करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, क्यों करना है, नहीं हुआ ना बिकॉज इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू एंड मे बी इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड आप इस भुलेखे में थे कि अरे मेरे लिए तो यह जरूरी ही है, पर सब चल रहा है ना बढ़िया। सो जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स विच यू हैव राइट नाउ इन द प्रेजेंट, बाकी जो नहीं हुआ बेहतर ही है, उससे अच्छा ही होने वाला है, दैट इज वाई वो नहीं हुआ। एंड ये रियलाइजेशन हमको लाइफ में बहुत लेट होता है बिकॉज यू नो वी गो थ्रू सो मेनी थिंग्स, बहुत सारा क्रिप करते हैं फॉर इयर्स एंड देन वी टर्न बैक एंड सी एंड हमें पता चलता है कि यार अच्छा ही हुआ क्योंकि जो मैं मांग रही थी मुझे तो उससे बेहतर ही मिला है ना। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मी, काफी लोगों को ये रियलाइजेशन हुई होगी, अगर हुई है तो जरा बताएं मुझे कि सही बोल रहे हो। तनीषा 3311063 पर सेंडिंग नीरज श्रीधर की आवाज में आशा है मूवी से मेरा जीना है क्या, ब्यूटिफुल ट्रैक, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

तनुवेद मानो से वो डाली ब्रदर्स की आवाज में रंगरेज ब्यूटीफुल ट्रैक तनीषा के साथ है आप रेडियो 106.3 एफएम पर. बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड अतुल जी का मैसेज आया है मुझे कुछ देर पहले जो मैंने गाना चलाया था ना ओ मेरे दिल की चैन, he was enjoying and singing loudly in his car while driving. That is amazing. यही होता है कि यू ना सुबह सुबह इतना एनर्जी से भर दो कि पूरा दिन बहुत अमेजिंग जाए, छोटी छोटी चीजें हमें बॉदर ना करें और इंशाल्लाह सक्सेसफुल एक जगह पे हुई. बाकी अगर हो रही हूँ तो प्लीज बताइएगा मुझे. और रोज मैं इस टाइम आपसे ब्लैकबोर्ड स्टोरीज का सवाल पूछती हूँ, पर आज थोड़ा चेंज करते हैं. आज मैं आपसे लेम जैम्स का सवाल पूछने वाली हूँ. So, आज का मेरा लेम सवाल सुबह सुबह पेश करती हूँ. अगर पापा को पढ़ने के लिए बोलेंगे तो कैसे कहेंगे एक वर्ड में? पापा को पढ़ने के लिए बोलना है तो कैसे कहेंगे एक वर्ड में? और संभाल के बोलना, ये एक्चुअली रियल लाइफ में यूज मत करना क्योंकि पढ़ सकती है पापा से फिर. तो जरा बताएं मुझे, पापा को अगर पढ़ने के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे? 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. फिलहाल एंजॉय करते हैं विशाल मिश्रा की आवाज में बंदर मूवी से. क्यों मजा आ रहा है, ब्यूटीफुल ट्रैक इट इज यार. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग RJ तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: दो दीवाने शहर में मूवी से टाइटल ट्रैक सुना आपने ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. दिनेशा आपके साथ विद अस मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और मैंने सवाल पूछा था कि अगर पापा को पढ़ने के लिए गएंगे तो कैसे गएंगे. भाई मेरे सवाल में ही जवाब था. वेरी फ्यू पीपल गॉट इट बट यस द करेक्ट आंसर इज पापड़. आई वॉज इमेजिनिंग अगर गलती से पापा को ऐसे बोल दिया ना पापड़ा ऐसे पढ़ेंगे ना भाई चट चट करके. सो नेवर टेक दैट रिस्क. ओके एंड आज है सुनील शेट्टी साहब का बर्थडे. दैट्स व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग थ्रू आउट द डे. आप सुनेंगे उनके स्पेशल गाने और अभी आ रहा है झांझरिया फ्रॉम द मूवी कृष्णा इन द वॉइस ऑफ अभिजीत. सुनील शेट्टी स्पेशल. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो 106.3 एफएम. जियो बिंदास मेरी जान.
1: मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा.
0: बिल्कुल नहीं भूलेंगे. बॉलीवुड के एनर्जेटिक और एजलेस अन्ना का बर्थडे भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. रेडियो ऑलिव करता है सुनील शेट्टी को हैप्पी बर्थडे विश. आज सारा दिन सुनिए अन्ना के सुपरहिट गाने.

0: and Radio Olive.
1: Radio Olive.
0: 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
1: Shahrukh Khan.
2: I'm in number one. Radio Olive.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: हर सुबह 6 से 10 हर जिस तनिशा को बिंदास मॉर्निंग में
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: निधि मोहन और अरमान मलिक के आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक इन द वॉइस तो बताई दी है फ्रॉम द मूवी बार बार देखो ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और थोड़ी सी वेदर की बात कर लेते हैं तो मेट डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि द राइस ऑफ अल अथरा स्टार ऑन 11th ऑफ ऑगस्ट मार्क्स द फाइनल फेज अभी भी बाकी है नेक्स्ट 13 डेज यू नो समर हीट के बाकी हैं और उसके बाद देखते हैं शायद कोई राहत मिले हमें और काफी हॉट और ह्यूमिड वेदर जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है विद द विंड्स मोस्टली नॉर्दर्नली एंड राइट नाउ टेम्परेचर इज वेरी वियर्ड आई मीन द स्काई इज वेरी वियर्ड आप ऐसे विंडो से देखोगे तो आपको स्कैटर्ड खूबसूरत क्लाउड्स दिखेंगे देख के ऐसा लगेगा कि भाई प्लेजेंट वेदर है आप बाहर निकलोगे और आपको रियलाइज हो जाएगा कि कितने गलत थे आप कल मेरे साथ यही हुआ व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी फॉर द वर्क इन द मॉर्निंग एंड आई सॉ फ्रॉम द विंडो एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल आई वाज लाइक अरे ये अच्छा वेदर कैसे हो गया एकदम से और फिर जैसे ही मैं नीचे उतरी घर से बाहर निकली आई वाज लाइक वाव तनिषा इसीलिए कहते हैं लुक्स आर डिसेप्टिव जो दिखे वो सच हो ये जरूरी नहीं वेल आप अपना ख्याल रखें इस वेदर में और बढ़िया बढ़िया गाने यहाँ पे मैं चला ही रही हूँ तो भेजती हूँ जबरदस्त हिट योर वे अरिजीत सिंह और निहिरा जोशी की आवाज में किल दिल से सजते स्टे ट्यून्ड बिंदास
1: अब सुनिए

You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. शंकर महादेवन की आवाज में दिल चाहता है मूवी से टाइटल ट्रैक सुना आपने. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने रिमाइंड करवाया है सारे मोटरिस्ट को कि भाई अपनी जो व्हीकल लाइट्स है वो ऑन रखें रात में. ठीक है, अगर आप बिना लाइट्स ऑन किए ड्राइव कर रहे हैं रात को तो इट इज़ अ ट्रैफिक वायलेशन अंडर आर्टिकल 70 ऑफ द ट्रैफिक लॉ और उसके रेपरकशंस भारी हो सकते हैं. सनसेट से लेकर सनराइज तक ये जरूरी है कि लाइट्स ऑन रहें सारी गाड़ियों की एंड दे ऑल्सो मस्ट बी स्विच्ड ऑन अगर वेदर बहुत ज़्यादा खराब है और विजिबिलिटी थोड़ी रिड्यूस हो गई है तो तब भी ऑन करके रखना है. इट इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी एंड द other people on the road who are driving. तो जरूरी है ना हमने एक दूसरे का ख्याल रखने अपने साथ साथ. राइट, कार्स शुड हैव फ्रंट हेडलाइट्स एंड रियर लाइट्स स्विच्ड ऑन एंड ड्राइवर्स मस्ट यूज डिप्ड बीम्स व्हेन अप्रोचिंग अनदर व्हीकल टू अवॉइड डैजलिंग अदर ड्राइवर्स. क्योंकि हाई बीम से ना एकदम से वो लाइट पड़ती है ना तो दो मिनट के लिए आंखें ऐसे चौंधिया जाती है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट. अलॉन्ग विद दैट अगर ऐसा कोई भी वायलेशन कर दिया तो 3000 से लेकर 10,000 रियाल तक का फाइन हो सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है एक हफ्ते से लेकर एक साल तक का. सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? हां जी. सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ख्याल रखिएगा हमेशा. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: Tanisha.
1: दिलजीत दोसांझ की आवाज में चार्मर ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर.
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी.
1: तो आज का जो मेरा वर्ड है डिक्शनरी का वो है प्लेंजाइटी. PLANXIETY and I suffer from this. So ये casual term है जो कि बना है planning plus anxiety को मिला के and it becomes plangxiety. It describes the stress or anxiety you feel when you overthink plans before they actually happen. That is me. मुझे किसी ने बता दिया कि bro अपन ये plan बना रहे हैं, we are gonna go there and all that. जब तक वो दिन नहीं आ जाता ना, मैं constantly सोचती रहूंगी यार एक तो सबसे बड़ा issue क्या पहन के जाना है ना. दूसरा इशू वो पहन के फिर यू नो एक्सेसराइज मैचिंग करना, जूते बैग, ओ माय गॉड सो मच स्ट्रेस इज देयर, और उसके लिए चीजें प्लान करना. सो वो कांस्टेंट एंजाइटी के स्टेट में ही रहती हूँ मैं जब तक वो चीज खत्म ना हो जाए. एंड ये भी कि मैं वक्त पे निकलूँ, वक्त पे पहुंच जाऊँ, और मुझे जल्दी उठना पड़ेगा सुबह क्योंकि देन आई हैव टू बी रेडी बाय दिस टाइम, और कितना वक्त लगे, सारी चीजें ऐसे प्लान कर लेती हूँ मैं. और मोस्टली ऐसा होता है कि एंड मोमेंट में कैंसिल कर देती हूँ. वो एंजाइटी इतना लेवल ऊपर चला जाता है कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता. सो या आई सफर फ्रॉम दैट लेवल ऑफ प्लेंजाइटी. डू यू बताओ मुझे, क्या आपको भी एंजाइटी होती है जब भी कोई प्लान होता है कहीं भी जाने का, और यू नो कोई बड़ा इवेंट आ रहा है उसके पहले, डू यू हैव दिस प्लेंजाइटी? 3311 1063 पर बताएं और सुनते रहो रेडियो ऑल ऑफ टू यू बिंदास.

0: टास मॉर्निंग, हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: एंड्री गुस्ताख दिल और फिर पाकिजा. ब्यूटीफुल है यार ये, बहुत सुंदर गाना है. और कोक स्टूडियो से दिस वन.
1: खुद से जो मिल पाएगा ओ यारा, दिल से जो सुना पाएगा.
0: इतने सुंदर लिरिक्स है ना, ध्यान से सुनोगे समझेगा.
2: हर दे मुश्किल जीना.
0: बैलेंस आउट करने के लिए ये सब भी चाहिए होता है ना. फिलहाल सुनते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर. स्टे ट्यून्ड एंड गोविंदास.
3: कूल सॉन्ग
4: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में गुस्ताख दिल फ्रॉम द मूवी दिल मांगे मोर ओनली ऑन रेडियो 11.6.3 एफएम. आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर एंड

This lady in US, उनको एक रेयर कंडीशन है कि उन्हें अपनी जिंदगी की हर चीज जो उनके साथ हुई उनकी लाइफ में, यू नो, एवरी मोमेंट शी रिमेंबर्स वेरी प्रिसाइसली. वो फुल डिटेल के साथ आपको बता सकते हैं. लाइक यू नो, छोटी सी थी, लाइक फर्स्ट फ्यू ईयर्स आई थिंक 1 or 2 years उन्हें याद नहीं है. उसके बाद से आफ्टर 2 years शी रिमेंबर्स ईच एंड एवरीथिंग. मुझे लगता है कि 8th standard और 7th standard के पहले की चीज़ें कुछ खास याद नहीं है, या उसके बाद का फिर भी वेगली याद है, वो भी अच्छे से ऐसे प्रिसाइसली मैं नहीं बता पाऊँगी. एंड देन लेटर ऑन तो चलो ठीक है, वो याद ही है, नहीं भी होना चाहिए पर है. तो या दिस कंडीशन शी इज सफरिंग फ्रॉम, एंड आई वॉज रीडिंग अबाउट इट एंड आई वॉज लाइक दैट इज ऑल्सो अ कर्स एंड दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग, है ना. कि आप अपने जो हैप्पी मोमेंट्स थे विद योर फैमिली व्हेन यू वर अ किड, अ टॉडलर, योर फ्रेंड्स, वो बहुत विविडली ऐसे रीइमेजिन कर सकते हो, रिलिव कर सकते हो. लेकिन द बैड वंस, जहाँ कभी कोई चोट लग गई, मम्मी से मार पड़ी, टीचर से डांट पड़ी, वो सब भी काफ़ी विविडली याद है. तो सैड हो जाएंगे ना वो सोच के. तो बट एनीवे, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑन दिस. इफ यू कुड रिमेंबर, अगर आपको एक सुपर पावर मिलता, ठीक है, या तो दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप हर एक सिंगल डिटेल लाइक दिस लेडी याद रखो अपनी लाइफ की, या फिर कुछ एक आधी चीजें सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो मेमोरी में से एंड यू रिमेंबर द रेस्ट. कौन सा वाला ऑप्शन आप चूज करोगे ये मैं जानना चाहूंगी. 3311106 पर मैसेज कीजिए और बताइए. और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान. Ooh, Sarah, take a star out of that, you got it.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. Coke Studio Pakistan से ओ यार beautiful गाना भाई बड़ा ही सुंदर यार listening to radio 11.6.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और मैंने कुछ देर पहले बताया था कि there's this lady she has this rare condition कि उन्हें अपनी लाइफ की हर एक डिटेल हर एक मोमेंट बहुत ही मतलब precisely याद है dot to dot ऐसा तो आई आस्क्ड यू गाइस कि अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि या तो आप पूरी मेमोरी ऐसे यू नो आपको याद रहेगी हर चीज़ या फिर थोड़ा बहुत कुछ याद रख सकते हो जो कि ऑलरेडी हो रहा है बट इससे थोड़ा विविडली बट देन यू हैव द ऑप्शन टू डिलीट सम ऑल्सो सो आई हैव गॉट मिक्स्ड आंसर्स ओवर हियर एंड मोस्ट ऑफ द लोग तो बोल रहे हैं कि सेकेंड वाला ऑप्शन ही चूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में इतने टैब्स खुले हुए हैं वर्स्ट डिसीजंस याद कर करके दिमाग का दही हो रखा होता है एंड देन देर इज दिस वन पर्सन राहुल वो कहते हैं कि मुझे चाहिए कि मुझे सब याद रहे क्योंकि मैं ना अपनी कीज और अपना फ़ोन रख के भूल जाता हूँ मुझे याद ही नहीं रहता है देन आई कीप कॉलिंग माई वाइफ की कॉलिंग एज एन आवाज़ फ़ोन तो भूल गए ना रख के घर पे तो ही कीप आस्किंग हिज वाइफ कि कहाँ रखा है मैंने ढूंढ के तो एंड शी इज़ लाइक कि अरे तुमने रखा है मुझे कैसे पता होगा वेल दीज आर नॉर्मल सीन्स है हाउस होल्ड के एंड देन सम पीपल आर लाइक मुझे ऐसे सिलेक्टिव डिलीट बटन मिल रहा है तो आई विल बी ओके विद दिस बढ़िया ऑप्शन है चीज़ें याद रहनी चाहिए मैं भी भूल जाती हूँ बर्थडेज वगैरह भूल जाती हूँ सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम सो या आई थिंक सेकेंड वाला ऑप्शन इज मोर फिजिबल जो चीज़ें हम नहीं याद करना चाहते उन्हें हम डिलीट कर दें सिंपल और वो हमारे पास है इट इज़ ऑल इन आर ब्रेन मेरी जान वी डोंट नीड टू हैव अ कंडीशन फॉर दिस आपने बस खुद से डिसाइड कर लेना अपनी विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग कुछ नहीं है मेरी बात मानो आप ठीक है स्ट्रेट यू ना जियो बिंदास लौट कर आऊंगी तो सारा मार्केश के साथ आऊंगी वी गोना हैव एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन अबाउट कैट्स सो जितने भी कैट लवर्स हैं डू नॉट गो एनीवेयर स्ट्रेट यू ना जियो बिंदास

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।
1: ये गाना
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

0: बस मॉर्निंग अर्जुन तमीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

तनिषा तनिषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर. बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरी जाने का. मेरी जान कल मिलेंगे सुबह 6 बजे. लेकिन उससे पहले सारा मार्केश के साथ जो मेरी पूरी कॉन्वर्सेशन हुई है यहाँ पर मैंने आपको कुछ ग्लिम्स ही सुनाए हैं. द इंटायर कॉन्वर्सेशन इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब. आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर रेडियो ऑलिव के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं पूरी कॉन्वर्सेशन. एंड अब वहां तक जा ही रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इंस्टा फेसबुक सब जगह भी कर लेना. रेडियो ऑलिव .qs द हैंडल. हाँ जी. और अपना ढेर सारा ख्याल रखो. स्टे हाइड्रेटेड, ईट लाइट फूड, अपने साथ पानी हमेशा रखो जब भी कहीं जा रहे हो. और बस मस्त रहो, स्वस्थ रहो, यही चाहती हूँ मेरी जान. और हमें सुनते रहो रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास.

सब चुप रह सकते हैं लेकिन आपकी कशिश बिल्कुल चुप नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे तो बस एक ही काम आता है और वो है बोलना। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफ एयर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जो पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की देखो एटलीस्ट मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, जैसे मैंने कहा कि मुझे तो बस एक ही काम आता है, वो है बोलना, और ये भी मैंने बहुत लेट करना शुरू किया था। यस, मतलब मैं 2-3 साल की थी तब तक कुछ बोलती ही नहीं थी, जैसे बच्चे जो है वो पापा मम्मी कचट पतल कुछ तो बोलते हैं ना, मैं कुछ बोलती ही नहीं थी। फिर मम्मी पापा ने पता नहीं कौन कौन से नुस्खे जो है वो अपनाए, दादी नानी ने पता नहीं कितने सारी जो है चीज़ें मुझे खिलाई, मिर्ची खिलाई ताकि मैं बोलने लग जाऊँ। और एक बार जो मैंने बोलना शुरू किया है तब से मैं वो रुकी नहीं हूँ। तो आपको जो है एक एग्जाम्पल, एक नमूना जो है वो मैं दिखाती रहूंगी कि किस तरीके से मैं नॉन स्टॉप बोलती रहती हूँ। सो 3311063 पर अगर फटाफट सबसे पहले गुड मॉर्निंग लिख दो या हाय कशिश, हेलो कशिश, कुछ भी लिख दो, बता दो, अटेंडेंस लगा दो कि आप यहाँ आ चुके हो। देखो इतना नॉनस्टॉप बोलती हूँ ना कि खांसी आ जाती है मुझे कई बार, लेकिन मैं रुकने का नाम नहीं लेती हूँ। सो फिलहाल जो है शो की शुरुआत करते हैं, लाइफ मस्त है शो की शुरुआत करते हुए। वेलकम टू द जंगल से ऊंचा लंबा कद फॉर एवर, ऊंचा लंबा फॉर एवर जो है हम आपको सुनाने वाले हैं। सो जल्दी से वॉल्यूम बढ़ा लो और व्हाट्सएप पे सबसे पहले एक मैसेज जो है आपकी कशिश के लिए ड्रॉप कर दो। मैं हूँ आपकी कशिश, मेरे साथ स्टे ट्यून रहो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: Sublime Trek. Brought to you by Danat Al Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:12. दैट इज 10:12. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
2: हाय रेडियो ओलिव. रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स. दिस इज रणवीर सिंह. रणवीर सिंह. स्टे ट्यून्ड.
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क. कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: दिल से दिल की बतियां, दिल से दिल की बातें यहाँ पे हम जारी रखने वाले हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं। अब देखो यार, क्या होता है ना कि आपसे दिल की बातें मैं करना तो चाहती हूँ, बट आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है उनके मैसेज से शुरुआत करते हैं। मोहम्मद यूसुफ खान जी ने जो है मुझे मैसेज कर दिया है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कशिश, वालेकुम अस्सलाम यूसुफ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? होप वेल, या आई एम गुड एंड वेलकम टू लाइफ मस्त है जियो बिंदास। ऑफ कोर्स मेरे शो में मेरा ही वेलकम, क्या बात है, हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग। पता है यूसुफ जी, मुझे ना बिल्कुल याद नहीं रहता कि डे कौन सा है, मुझे सिर्फ याद रहता है थर्सडे। सो थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। आज ट्यूसडे हो गया है एंड हमें जो है अमित ठाकुर जी ने भी गुड मॉर्निंग कहा है, थैंक यू अमित जी। एंड अस्मा जी ने गुड मॉर्निंग लिखा है और लिखा है हियर्स टू अ गुड मॉर्निंग एंड अ डे फिल्ड विद ब्लेसिंग एंड लव, थैंक यू सो मच। और आपका प्यार ही तो है जो मुझे रोज नींद खोल कर यहाँ आने के लिए मोटिवेट करता है। बाकी चलिए बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, मौसम का मामला क्या रहने वाला है आज। सो इस वक्त दोहा में मेरा फोन तो मुझे टेम्परेचर बता रहा है 41 डिग्री सेल्सियस करंटली एंड हाइएस्ट टेम्परेचर आज का 43 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वाओ, 43-34, नाइस। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहेगी एंड ह्यूमिडिटी के चलते आपको टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री ज्यादा फील होगा। एंड अगर मैं बात करूं कि गाइस सनस्क्रीन आपको पूरे टाइम लगा के रखनी है एंड हवा किस स्पीड से बहेगी, हवा तो आज बहने ही नहीं वाली है ज़्यादा, तो अपने बाल वाल उड़ने का और थोड़ा रोमांटिक सीन होने का बिल्कुल इमेजिन करना भी मत, काम पे ध्यान दीजिए। एंड बाकी इस हीट को बीच करने के लिए कूल सॉन्ग ऑफ द आर आपके रेडियो सेट्स पर इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कसूच के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं.

जी प्रियदर्शन मूवी हंगामा का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ओलिफर। और मुझे ना कुछ प्रोड्यूसर्स कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं कि उनकी मूवीज मुझे अच्छी लग ही जाती है, जैसे प्रियदर्शन की मूवीज जो है मुझे अच्छी लगती है। फराह खान ने अभी तक जितनी मूवीज डायरेक्ट की हैं, पहले वो शुरू में लगता है कि यार इतनी क्रिंज है, लेकिन द ओ जीज है, मतलब तीस मार खा को कितना क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद अब जेंजीज की यू नो कल्ट क्लासिक मूवी हो गई है वो। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश तो देखो कर रही हूँ। अब देखो यार, फराह खान की मूवी से मुझे याद आया, हैप्पी न्यू ईयर भी फराह खान की एक बहुत ही अमेजिंग मूवी थी। वैसे सबको अच्छी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो क्या अमेजिंग म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर एंड डायलॉग, सबकी एक्टिंग सब अमेजिंग था। स्टोरी थोड़ी नई थी, बट बाकी सब ये था। ओके, सो उस मूवी के बारे में जो है ऐश्वर्या राय से एक इंटरव्यू में जो है जब बात हुई कि यार ऐसी स्पेक्युलेशन थी कि दीपिका पादुकोण की जगह हैप्पी न्यू ईयर मूवी में आप होने वाले थे शाहरुख खान के अपोजिट, फिर तो फिर ऐश्वर्या राय का ये कहना था कि यार क्योंकि उस मूवी में ऑलरेडी अभिषेक बच्चन जो थे वो पहले से कास्टेड थे, एंड ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, फराह खान की मूवी थी एंड वो सुपरहिट होने ही वाली थी, शाहरुख खान के अपोजिट कमबैक का मौका मिल रहा था, अमेजिंग था, बट अभिषेक बच्चन के होते हुए मूवी में किसी और के अपोजिट कास्ट होना इज अ बिट यू नो ऑकवर्ड। सो उसे जो है हटाने के लिए, उस ऑकवर्डनेस को दूर रखने के लिए उन्होंने इस मूवी को मना कर दिया। देखो अब मुझे नहीं पता कि डिसीजन सही था या नहीं था, बट ऐश्वर्या राय के लिए फुल रिस्पेक्ट अपने दिल में रखते हुए, ठीक है मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस रोल में दीपिका पादुकोण के अलावा और किसी को इमेजिन कर ही नहीं सकती। मोहिनी जिसका यू नो डांस एक आर्ट है आर्ट, उसके अलावा मैं और किसी को इमेजिन नहीं कर सकती। आप बताइए, क्या आप ऐश्वर्या राय को दीपिका पादुकोण की जगह इमेजिन कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। जैसे जोधा अकबर मूवी में जो है, मैं जोधा के कैरेक्टर में ऐश्वर्या राय के अलावा और किसी को इमेजिन नहीं कर सकती। मैं हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय के अलावा किसी और को इमेजिन नहीं कर सकती, वैसे ही मुझे नहीं लगता कि मैं दीपिका पादुकोण की जगह हैप्पी न्यू ईयर में ऐश्वर्या राय को देख सकती थी। फिलहाल हुड़ हुड़ दबंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर दबंग मूवी से, इसे इंजॉय कीजिए एंड लौट के वापस आइए, क्योंकि आपके स्ट्रेस को चाचा बाय बाय कैसे किया जा सकता है इस पर हम बात करने वाले। सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो पिदास।

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: नंबर 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

मन जाने कोक स्टूडियो पाकिस्तान का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड जल्दी जल्दी आपको जो है आपकी एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम करने का एक तरीका आपको बताने वाली हूँ। सो 10 सेकंड में आप अपनी, अगर आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है तो आप किस तरीके से कम कर सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। तो आपको यूज करना है 333 रूल, जहां पर आपको अपने, जैसे आपको एंजाइटी हो, अपने आसपास की तीन चीजों को आपको देखना है एंड उन्हें नेम करना है। लाइक चेयर, टेबल, माइक मुझे दिख रहा है तो मैंने ये बोल दिया। एंड फिर उसके बाद तीन बॉडी पार्ट्स को जो है वो आपको मूव करना है, लाइक योर हैंड्स, एंकल्स, योर हेड। और उसके बाद तीन साउंड्स आपको कौन सी सुनाई दे रही हैं ये आपको मेंशन करना है खुद के मन में। तो इससे क्या होता है, आपका जो ध्यान है वो भटक जाता है एंड आपकी नर्व्स जो है वो रिलैक्स हो जाती है। एक बार ट्राई करना और मुझे बताना। फिलहाल एक और अच्छा तरीका स्ट्रेस कम करने का, गाने इज ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर। इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: brought to you by Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khul.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:13. दैट इज 11:13. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: हेलो लिसनर, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूप सुहाना लगता है, चांद दीवाना लगता है, आपके सामने जाना आपकी खूबसूरती के आगे चांद टिक पाएगा क्या? कैसी बातें कर दी आपने। देखो मैं तो आपकी इतनी तारीफ करती हूँ, आप लोग मेरी तारीफ ही नहीं करते हो यार। मैं तरीके बता रही हूँ आपको, आप मेरी जो डायलॉग्स हैं, जो मेरी लाइंस हैं, वो किसी को जाके बोलो वो इम्प्रेस हो ही जाएगा, लेकिन आप ही लोग मुझे रिप्लाई नहीं करते यार। कोई बात नहीं, चलो वेलकम बैक 106.3 रेडियो पर। मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। अब देखिए यार, गूगल आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करती हूँ, बल्कि सब ही यूज करते हैं आजकल। मतलब आपको बहुत रेयरली कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो गूगल का बिल्कुल ही यूज नहीं करता है। सो गूगल ने सबसे अनहिंज्ड, यानी सबसे अनयूजुअल, सबसे अजीब से जो क्वेश्चन गूगल से पूछे जाते हैं उसकी एक लिस्ट जारी करी है, एंड उसमें बहुत ही फनी क्वेश्चंस हैं। सो मैं वो आपको बताऊं, उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप लोग मुझे बताइए कि आपने ऐसा कौन सा, मतलब बहुत ही अजीब सा सवाल गूगल से पूछा हुआ है। जैसे मैंने तो पूछा हुआ था कि यार गूगल, हाय गूगल, मैं पता नहीं क्यों जब भी कोई ऐसा अजीब सवाल पूछती हूँ मैं हाय लिख देती हूँ। मुझे पता है कि गूगल मुझे जज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं हाय लिखती हूँ। हाय गूगल, कैन आई कलर माय हेयर ब्लू एंड मेरी मम्मी को पता ना चले, इज दिस पॉसिबल? ना इंग्लिश ना हिंदी, क्योंकि मुझे लगा था कि गूगल मेरी फीलिंग समझ जाएगा, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे लगता है कि ये एक अजीब चीज थी जो मैंने पूछी थी गूगल से। आप मुझे बताइए कि गूगल से ऐसा कौन सा अजीब गरीब सवाल आपने पूछा हुआ है। 3311063 पर जो है मैसेज करना है, 3311063। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जल्दी से ये गाना जो है इंजॉय करो, मुझे मैसेज करो, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि गूगल ने मुझे लिस्ट जारी करी है और जो है उस क्वेश्चन की लिस्ट में क्या क्या है और उसका रिस्पॉन्स गूगल ने किस तरीके से दिया हुआ है। सो स्टे ट्यून रही आपकी कशिश के साथ। फिलहाल हसीनो का दीवाना गाना, उर्वशी राउटेला फीचरिंग, ये गाना है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, काबिल मूवी से ये ट्रैक है, एंजॉय करके आइए, उसके बाद जरा बातचीत जारी रखते हैं। 3311063। मैं हूँ आपकी कशिश जियो बिंदास।
1: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

बहुत लंबे टाइम के लिए ऐसा था कि ये जो गाना था ये मेरी जो है अलार्म की टोन थी, जब मैं स्कूल में थी ऑफ कोर्स, बहुत छोटी थी एंड तब ये मूवी रिलीज हुई थी एंड तब ये गाना जो है हम स्कूल में भी गाते थे, सो इट वाज फन। एंड सुबह हो गई है, अगर अभी अभी आप उठे हैं, अभी नींद खुली है तो गुड मॉर्निंग, थोड़ी ही देर में गुड आफ्टरनून होने वाली है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं। अब देखिए यार, थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि यार ऐसे फनी गूगल सर्चेस आपने क्या किए, मतलब ऐसी कौन सी चीजें आपने सर्च की हैं जो थोड़ी सी यू नो फनी है, व्योर्ड है, अनहिंज्ड है। सो गूगल ने भी एक ऐसी ही चीज़ों की लिस्ट निकाली है, वैसे तो वो अक्सर ऐसे लिस्ट जो है निकालते रहते हैं जिसमें फ़नी सर्च लोगों ने किए हैं, लेकिन ये कुछ बहुत ही अलग से सवाल है। सवाल इसलिए कि जिसमें लोगों ने प्रिटेंड किया है कि वो कुछ और है। जैसे सबसे पहले जो है शुरुआत हुई है, किसी ने लिखा है हाय आई वॉज जस्ट बॉर्न, मैं अभी पैदा हुआ हूँ और मैं सर्च करना हूँ मुझे क्या करना चाहिए। गूगल ने इस पे लिखा है ओ माय गॉड आप अभी अभी पैदा हुए हैं, आप कितने स्मार्ट बच्चे कि आप टाइप भी कर पा रहे हैं। उसके बाद किसी ने लिखा है हाय आई एम अ चिकन, इज इट सेफ टू वॉक ऑन द रोड्स, वाओ। उसके बाद किसी ने जो है सर्च किया है कि हाय कैन आई प्ले GTA 6 ऑन माई फोन, वेरी नाइस गाइज। उसके बाद किसी ने लिखा है कि हाय आई एम एन एप्पल एंड आई एम अबाउट टू फॉल फ्रॉम द ब्रांच, यानी मैं एक सेब हूं और मैं बस गिरने ही वाला हूं टहनी से, क्या करूं। एंड इस पे गूगल ने भी जवाब दिया है कि काम डाउन, लंबी लंबी सांसें लो और टहनी को पकड़ के रखो। वाओ, मजाक करने में जो है

कम थोड़ी है गूगल। उसके बाद एक और इंसान ने लिखा है कि हाय आई एम अ फिश एंड देयर इज अ वर्म इन फ्रंट ऑफ मी, कैन आई ईट इट? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ये कुछ अनहिज्ड सवाल है जो मुझे नहीं लगता कि लोगों ने बिल्कुल भी सीरियस रहते हुए जो है पूछे हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई भी खुद को एप्पल नहीं बोलेगा ना। वैसे आप लोगों से मैंने भी पूछा था कि यार ऐसे कौन से सवाल है, सो लेट्स सी। ओके, अस्मा जी ने लिखा है व्हाई कैन यू नॉट स्मेल शैम्पू आफ्टर वॉश स्पेशली अदर देन हेड एंड शोल्डर। आपने ये पूछा है कि आप अपना शैम्पू जो है उसे स्मेल क्यों नहीं कर पाती उसे धोने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शैम्पू बदलने की जरूरत है, क्योंकि मेरा शैम्पू तो दो दिन तक मस्त खुशबू मारता है। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ खान जी ने कहा है कि मैं अभी तक ऐसा कोई भी वियर्ड क्वेश्चन जो है नहीं पूछा है, लेकिन डॉटर पूछती रहती है। एक बार छुट्टी के दिन बोर हो रहे थे तो मुझे बोली कि अब्बू चलिए कुछ खेलते हैं इंडोर गेम। तो मैंने कहा कि आप बताइए कि क्या खेला जाए, तो उन्होंने गूगल AI से चेक किया। आजकल के बच्चे भी ना, देखिए मैं भी अक्सर यही करती हूँ, जब मुझे ये कन्फ्यूजन होता है ना कि आज क्या खाया जाए, तो मैं AI पे गूगल पे जाके लिख देती हूँ कि मेरे पास ये सामान है, बता दो मुझे कि आज मैं क्या बना सकती हूँ या मैं क्या खा सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच आप सबके रिप्लाईज के लिए। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए। उसके बाद आज किसी बहुत ही स्पेशल इंसान का हैप्पी वाला बर्थडे है, सो वो सेलिब्रेट करते हुए उनकी अमेजिंग मूवीज जो है वो मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ, कौन कौन सी आप देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए एंड ये गाना जो आने वाला है इसे इंजॉय करिए। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड जी बिंदास।

0: सिद्धार्थ मल्होत्रा को बढ़िया तरीके से डांस करते हुए हम देख चुके हैं, मतलब सुन चुके हैं इस गाने में। अब आगे बढ़ते हैं। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अब आज बर्थडे है हमारे अन्ना का, यानी सुनील शेट्टी जी का। उनके स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं, मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये मैं होने नहीं, रहने दो कशिश, भूल जाइए कि ऐसा कुछ हुआ अभी। सो मैं अन्ना की यानी सुनील शेट्टी जी की आपको 3 मूवीज जो है, मस्ट वॉच मूवीज जो है, वो रिकमेंड करने वाली हूँ। आपने देखी होगी लेकिन फिर से जाकर रिविजिट करो, फिर से जाके देखो। सबसे पहले तो धड़कन, 2000 में ये मूवी आई थी, एंड आज के दिन जो है इस मूवी, यू नो, आज के दिन ही 2000 में ये रिलीज हुई थी। सो आज इसकी एनिवर्सरी भी है, एंड आज सुनील शेट्टी जी का बर्थडे भी है। सो धड़कन मूवी जरूर से देखिए, एंड इसमें गाना है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दैट इज अमेजिंग। और क्या ड्रेसेस पहनी है, बहुत ही बढ़िया। जाके देखो धड़कन मूवी, उसके बाद आप आवारा पागल दीवाना मूवी 2002 में आई थी, ये देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त एक्शन कॉमेडी है। एंड फिर दी ओजी हेरा फेरी 2000 में आई थी, एंड टू नॉट माय सरप्राइज ये सारी ही मूवीज मेरे पैदा होने से पहले रिलीज हो गई थी। सो ये सारी मूवीज जाके एक जाकर एक बार फिर से रिविजिट कीजिए, एंड सुनील शेट्टी जी को हैप्पी वाला बर्थडे बोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एंड उनके आज स्पेशल वाले गाने तो आप सुनेंगे ही सारा दिन, लेकिन उनकी रीसेंट मूवी वेलकम टू द जंगल से एक अमेजिंग वाला गाना, यानी मूवी का टाइटल ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए। और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास
1: रेडियो।

देखिए जिगर तो बिल्कुल ठंडा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी चल रही है। वेलकम जी 106.3 रेडियो पर, मैं हूँ आपकी कसूरजन, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए जिगर ठंडा हो या ना हो, आपको यू नो एस्थेटिकली कूल बनाने का जो मेरा जिम्मा है वो मैं उठाती रहूंगी, यानी आपको फैशन के मामले में, ट्रेंड्स के मामले में फुल ऑन अपडेटेड रखूंगी। सो देखिए यार, अब अगर हम बात करें कपड़ों की, सो उनके बारे में तो मैंने आपको बहुत बता दिया है, मैंने आपको एक्सेसरीज के बारे में बता दिया, लेकिन एक DIY ट्रिक जो आप कर सकते हो अपनी पुरानी चीजों को यू नो फैंसी बनाने के लिए, तो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। सो मैंने आपको ये भी जरूर बताया था कि आजकल टॉप्स हो, ड्रेसेस हो, स्कर्ट्स हो, साड़ीज हो, शर्ट्स हो, सब में ना लेस डिटेलिंग करी जा रही है, यानी वो जो प्यारी सी वाइट कलर की या किसी पेस्टल कलर की एक नेट वाली या एम्ब्रॉयडरी वाली जो लेस होती है वो हर जगह लगाई जा रही है, एंड इसके बाद क्या होता है कि अच्छी प्रिटी लगने लग जाती है चीजें। अब यही सेम चीज आपको अपनी बाकी चीजों के साथ करना, यानी आपके बैग का जो हैंडल है, बैग का जो स्ट्रैप है, उस पे आप लेस रैप कर सकते हो, अपना हेडफोन का जो हैंडल होता है ना, हेडफोन पे जो पार्ट हमारे सर पे रेस्ट करता है उसको रैप कर सकते हो, एंड बो बना सकते हो रिबन से। ओ माय गॉड, कितना क्यूट और एस्थेटिक दिखेगा। लोग जो है ईयरफोन्स, जो वायर्ड ईयरफोन्स होते हैं, उसके केबल को रिबन से और लेस से जो है उसको टाई कर रहे हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। सो एक बार आप भी ट्राई करो, एंड अगर DIY करो तो मुझे फोटो ज़रूर भेजना 3311063 पर। फिलहाल इस कूल सी यू नो ट्रिक के बाद कॉकटेल 2 का एक गाना तो बनता है, सो इसीलिए आगे आपके रेडियो सेट्स पर ये गाना, इस एंजॉय करो, और बाकी आपकी कोशिश के साथ कहते रहो जी बिंदास।

0: 106.3 FM.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है, इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:10, दैट इज 12:10, स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है, ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
5: जैकी श्रॉफ
4: रेडियो 106.3 जियो बिंदास। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: निर्जा मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफेंट। मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश तो देखो कर ही रही हूँ। अब देखो नीजा से मुझे याद आया कि सोनम कपूर को हम कई बार कितना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वैसे तो उन्हें बॉलीवुड की फैशनिस्टा मानते हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंटली ड्रेस होती है एंड उनके फैशन स्टाइल्स, उनके ड्रेसिंग गेम जो है वो एकदम हाई रहता है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि इन्होंने जितनी भी मूवीज में यू नो एक सिंपल एंड यू नो मिनिमल गर्ल एस्थेटिक्स हमें दिखाए हैं, मतलब बहुत ही मिनिमल मेकअप के साथ, बहुत ही इजी ड्रेसिंग के साथ जब भी हमारे सामने आई हमें इनके लुक्स बहुत ही अच्छे लगे, चाहे वो दिल्ली 6 की वो बेसिक यू नो कुर्तीज हों, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। रांझना मूवी का जो इनका यू नो एक ड्रेसिंग गेम था वो काफ़ी अच्छा था। एंड ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनमें इनका ड्रेसिंग गेम बहुत मिनिमल था एंड वो एक स्टेटमेंट बन गया था उस टाइम के लिए जब ये मूवी आई थी। सो मुझे तो पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो सोनम कपूर जब वो डिसेंट ड्रेस करती है, डिसेंट इन अ सेंस जब वो बिना किसी फैशन स्टूडियो के जो है ड्रेस करती हैं, बिल्कुल नॉर्मली ड्रेस करती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हो सकता है कि मुझे गलत लगता हो, लेकिन आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं मुझे 3311063 पर। फिलहाल आपका फैशन गेम जो है वो तो मैंने हाई कर दिया है आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताकर। थोड़ी देर में आकर और डिटेल में बात करेंगे कुछ और चीज़ों पर, लेकिन उससे पहले कूल सॉन्ग ऑफ द आर आर आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कोशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण जी की आवाज में लकी मूवी का ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफेंट। मैं हूँ आपकी कसूर जेंशो, आपके लिए लाइफ मस्त है जो है लेकर आ गई हूँ, जो अगर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, अब तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि मेरे फेवरेट एक्टर जो है वो शाहरुख खान है, एंड मैं शाहरुख खान जी की कितनी बड़ी फैन हूँ, एंड मुझे उनका हर काम पसंद आ जाता है, मुझे उनका हर रोल पसंद आता है। वो किसी एड में भी होते हैं ना, तो मुझे वो भी ऐसे लगता है कि रिपीट पे देखती जाऊँ मैं। ओके, लेकिन एक ऐसा रोल है जिसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर आपने हीरोइक काम तो नहीं किया। मुझे शाहरुख खान के उस कैरेक्टर से जो है थोड़ी सी ऐसी इरिटेशन हो रही थी, एंड शायद वो कराना भी चाहते थे इसलिए वो उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी। मे बी मैं बात कर रही हूँ कभी अलविदा ना कहना की। तो ये जो मूवी है करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन की, एक बहुत ही अमेजिंग मूवी थी। रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, किरण खेर एंड ओ माय गॉड शाहरुख खान। सो इस मूवी को जो है आज के दिन जो है 20 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, एंड लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ओ नाइस कभी अलविदा ना कहना, ये वो व्हाट यू नो प्लेलिस्ट दिस मूवी हैज, कितने अमेजिंग गाने हैं, कितनी अमेजिंग एक्टिंग की है। लेकिन बस मुझे इस मूवी के बारे में कुछ बहुत इरिटेटिंग लगता है, तो वो लगता है शाहरुख खान की एक्टिंग। आप लोगों को, अगर आप भी शाहरुख खान के फैन है, तो हो सकता है मुझ पर थोड़ा सा गुस्सा आए ये कशिश ये क्या बोल रही हूँ, बट सच में वो ना प्रीति जिंटा से अच्छे से बात करते हैं, ना रानी मुखर्जी से अच्छे से बात करते हैं। वो एरोगेंट है, वो गुस्सा करते रहते हैं, एंड पूरे टाइम बस एक चिड़चिड़ापन स्क्रीन पे जब भी वो होते हैं तो देखने को मिलता है, एंड शायद उनके कैरेक्टर की डिमांड थी इसीलिए हमें ये सब कुछ देखने को मिला। सो ऑल इन ऑल कभी अलविदा ना कहना में सब कुछ सही है सिवाय शाहरुख के कैरेक्टर के। बाकी आपको ये मूवी जो है कैसी लगती है, और अगर ऐसी कोई मूवी है जो आपको बहुत पसंद है ना, आप रिपीट पे देखते हो जैसे मैं धर्मा प्रोडक्शन और शाहरुख खान की ही कभी खुशी कभी गम बार बार देखती हूँ, एंड हम ही कितनी बार जो है रेडियो पे ही डिस्कस कर चुके हैं कि उसे 3KG कहना चाहिए, K3G कहना चाहिए, आखिर कभी खुशी कभी गम का शॉर्ट फॉर्म क्या होना चाहिए। फिलहाल आज 20 साल पूरे किए हैं कभी अलविदा ना कहना में, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जाकर देखो। अब देखना पड़ेगा कि 20 सालों में आखिर कितना बदल गया है टाइम, सो जाकर देखो। फिलहाल एक और अमेजिंग मूवी से गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो ये इंजॉय करो और बाकी लौट करो, बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। स्टे ट्यून और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

मेरा शो इंजॉय या तो ढिशुम। देखो मैं तो ऐसे ही धमकी दे सकती हूँ, और मैं धमकी थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं तो बस आपसे प्यार मांग रही हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव बेर, मैं हूँ आपकी कसर शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, मैं भी जाती हूँ यार। मुझे ना ऐसे लग रहा है कि आज चाय पीने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं जाती हूँ थोड़ा सा चाय वाय पी के आती हूँ। बाकी अगर आपको हम लोग क्या कुछ मस्ती मजाक करते रहते हैं बिहाइंड द माइक, वो अगर आपको देखना है तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाओ एंड फॉलो बटन जो है वो दबा दो, वहां पे आपको रेडियो ऑलिव के सारे आरजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आप हमारा कंटेंट एंजॉय कर सकते हो, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलेगा वहां, फन कंटेंट मिलेगा, हर टाइप का कंटेंट वहां पर अवेलेबल है। और बाकी अगर कुछ पर्सनल बातें करनी है तो 3311063 इज द नंबर, जल्दी से आओ मैसेज कर दो। बाकी मुझे टाटा बाय बाय कह दो, और जाते जाते मैं वही कहना चाहती हूँ जो हर रोज कहती हूँ कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना एंड सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपकी कशिश, मुझे याद करते रहो और मेरे साथ कहते रहो जियो बिंदास टाटा बाय बाय।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो ओलिव।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
0: ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा
2: बिल्कुल नहीं भूलेंगे बॉलीवुड के एनर्जेटिक और एजलेस अन्ना का बर्थडे भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है रेडियो ऑलिव करता है सुनील शेट्टी को हैप्पी बर्थडे विश आज सारा दिन सुनिए अन्ना के सुपरहिट गाने

0: 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। ये है ऑलिव रिचार्ज ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। तो कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए, बांध रखिए तो कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम गाने सुनाने वाले हैं, गुनगुनाने वाले हैं और किससे खबरें कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ, क्या क्या हो रहा है, डिटेल में बताना। तो तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया खबर आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। मार्क ज़करबर्ग ने कल एक पोस्ट डाला, इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला, एक वीडियो था। सच बताऊं तो कुछ समझ में नहीं आया, 1 किलो बातें की 1 ग्राम भी समझ में नहीं आया। कुछ ना कुछ वो बोले जा रहे थे, सुपर इंटेलिजेंस ये सब वो सब, ओपन सोर्स सब, मगर जनता भी भाई सोच रही थी कि भाई इसे क्या हो गया करके, पहले मेटावर्स का क्या हुआ वो बताओ करके। और कमेंट सेक्शन इतना ट्रिपी, मतलब क्या बताऊं मैं, हर कोई उस बंदे का मजाक उड़ा रहा है। एक बंदे ने तो यही लिख दिया कि खुद के प्लेटफॉर्म में ही बेइज्जती हो रही है बंदे की करके। बट एनीवे, क्या बोला गया है उस वीडियो में उसके बारे में हम जरा डिटेल में आपको बताएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पे गाने इंतजार कर रहे हैं। तो गाने प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम बात कर रहे थे मार्क ज़करबर्ग के वीडियो के बारे में जो उन्होंने कल अपलोड किया था। बेसिकली वो वीडियो जो है उनके 6000 वर्ड एक ऐसे के ऊपर है, एक ऐसे उन्होंने लिखा है, एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल लिखा है, और 6000 वर्ड्स है, और उसमें मतलब बहुत ज्यादा लिखा है उन्होंने। और उसमें AI के फ्यूचर के बारे में बात की गई है, कैसे पॉलिसीज आने चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होने चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने दो की वर्ड्स बोले हैं, और एक वर्ड तो 60 बार उस पूरे आर्टिकल में रिपीट हुआ है, वो है सुपर इंटेलिजेंस। तो बेसिकली मार्क यही बोल रहे थे कि सुपर इंटेलिजेंस जो है अपने एक नए फेस में आने वाला है, जहां पे हर कोई अपना एक सुपर इंटेलिजेंट मॉड्यूल जो है यूज करेगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज हम इस सुपर इंटेलिजेंस को यूज कर पाएंगे। एंड उन्होंने ये भी बोला कि AI जो है, ऐसे सुपर इंटेलिजेंस चीजें जो हैं वो लोगों के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, इसलिए एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म आने वाला है, ताकि मेटा के जितने भी AI ओरिएंटेड चीजें हैं वो लोगों के लिए अवेलेबल हों। अब ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट जरूर है, क्योंकि बाकी जो AI के कंपनी ओनर्स हैं या फिर फोर फ्रंट रनर्स हैं, वो लोग कहते हैं कि AI का जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्जन है वो कंपनी के लोग ही ज्यादा टाइटली पकड़ के रखे, ताकि ज्यादा पब्लिक को उसका यूज करने का मौका ना मिले। बट एनीवे, इससे बिल्कुल विपरीत तरीके से मार्क ज़करबर्ग का स्टैंस है। क्या होता है क्या नहीं होता ये तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पे गाने प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। मैं बस ऐसे ही क्लिक बेट जैसे बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो कहानी ये है कि 25 साल की एक युवती, वो सीढ़ियां उतर के जा रही थी, एकदम से उनका पैर फिसला, वो गिरने वाली थी, और जिस तरीके से वो गिर रही थी उनका सर जाके सीढ़ी पे लगने वाला था, मगर एकदम से एक लड़का वहां पे पहुंचा और उन्होंने एकदम से उन्हें पकड़ा और उनका सर पकड़ा, जिसके कारण उनका सर सीढ़ी पे नहीं लगा, एक बहुत ही सीरियस इंजरी से वो बच गई। बहुत ही हंकी डोरी स्टोरी है ना, मतलब वाह यार, एक लड़का आया, उसने एक लड़की को बचा लिया, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। वैसे इससे बढ़िया तो नहीं हुआ, इससे बेहतर ही हुआ, क्योंकि उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर केस कर दिया, उसे सू किया, बोला कि वो एकदम से आया तो मैं घबरा गई और मैं गिर गई। बट सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल अलग ही दृश्य दिखाता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि लड़की गिर रही थी, उसके बाद वो लड़का वहां पे आया था। एनीवे, मुकदमा जो है चल रहा है अभी, लड़के के फेवर में केस आएगा या लड़की के फेवर में आएगा ये तो मुझे नहीं पता, मगर हेल्प करना भी शायद कभी कभी भारी पड़ सकता है। आजकल यही दिखाई दे रहा है, और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Hello.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सदेव। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया खबर हमारे हाथ में लगी है। इंफोसिस और क्रॉक्स जो है काफी बढ़िया एक बिजनेस डील साइन कर चुके हैं। ये 10 साल का एक स्ट्रेटेजिक डील है जहां पे इन फुटवेयर जायंट्स ने जो है अपने आईटी और बिजनेस ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इंफोसिस को दिया है। और इस डील में जैसे कि मैंने बताया 10 साल का डील है ये, जिसमें 200 मिलियन प्लस डॉलर्स की वैल्यू है और फोकस होगा एआई ऑटोमेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। और देखते हैं कैसे एक आइकॉनिक फुटवेयर ब्रांड से एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी की ओर क्रॉक्स बढ़ता है। फिलहाल ये बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज।
4: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

दुनिया में हो रहे विचित्र चीजों के बारे में खबर लेकर मैं आ चुका हूँ। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी खबर है, अम्यूजिंग खबर है। बात यह है कि फ्लोरिडा में एक बंदा है, वो एक क्रेडिट कार्ड थीफ है, ठीक है। तो लोगों का क्रेडिट कार्ड चुरा के बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहा था, और पुलिस को जब इसके बारे में खबर मिली तो पुलिस ने इसके ऊपर एक लुकआउट नोटिस जो है सोशल मीडिया में डाला। अब ये बंदा क्या करता है, ये पुलिस डिपार्टमेंट को मैसेज भेजता है, अपना एक नया फोटो भेजता है, कहता है कि जो आपने फोटो पहले डाला है ना वो बहुत गंदी फोटो है, वो मत यूज करो, ये वाली यूज करो, ये अच्छी है करके। सोच के देखिए कि भाई क्या चल रहा है इस दुनिया में, क्या ही चल रहा है। फिलहाल वो पकड़ा गया नहीं गया ये तो मुझे पता नहीं, मगर उसके गट्स को तो मैं 100 out of 100 देना चाहूंगा। और यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। वर्ल्ड के सबसे आइकॉनिक फोटोग्राफ्स में से एक है 1927 के सॉल्वे कॉन्फ्रेंस का एक फोटोग्राफ, जहां पे वर्ल्ड के ही 29 बेस्ट ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट जो थे वो गैदर किए थे, और उसमें बस एक ही महिला थी, एक ही वुमन थी। और सोचिए, इतने साल बाद, नियरली 90 ईयर्स के बाद उस इमेज को रिक्रिएट किया गया एक नए एरा को सेलिब्रेट करने के लिए, जहां पे 28 वुमेन फिजिसिस्ट थे और सिर्फ एक आदमी था। फिजिक्स के फील्ड में जो रिमार्केबल प्रोग्रेस जो है महिलाओं ने की है, उसके बारे में हम देख सकते हैं इसमें से कि किस तरीके से जो है ज्यादातर महिलाएं जो हैं आ गई हैं फिजिक्स में, और अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा चेंज है। और यही बात बोलते हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही अचंभित कर देने वाली खबर जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कभी कभी इंडिया में जब आपने देखा होगा रोड साइड में कुछ ऐसे ठेले लगे होते हैं जहां पे लोग एग्स बेचते हैं या फिर ब्रेड ऑमलेट बेचते हैं, ठीक है, बट वो ठेला जो है वो एक सिर्फ एक सेटअप है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये एक कहानी है एक वेंडर के बारे में जो बोलते हैं कि मैं एक पोल्ट्री फार्म ओन करता हूँ और अराउंड 3600 एग्स जो है हर दिन उनके फार्म में से जो है प्रोड्यूस होते हैं, और जिसमें से सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन उसके कार्ट में बेचा जाता है, बाकी पूरा जो है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, लोकल शॉप्स में जाते हैं। और उनके हिसाब से वो कहते हैं कि सारे एक्सपेंसेस के बाद 2.5 से 3 लाख रुपए जो है बच जाते हैं, यानी कि एक हम्बल एग कार्ट जो है वो बस एक विजिबल फेस है एक बहुत ही बड़े फार्म टू मार्केट ऑपरेशन का। सोच के देखिए उस बंदे की बिजनेस प्लानिंग किस लेवल पे जा रही है। और जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ भाई बंदा बस ठेला चला रहा है बेचारा करके, मगर उसके पीछे बहुत बड़ा अलग से बिजनेस उसने खोल रखा है। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: Life 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Hi guys, this is Abhar Chetty Khurana, and you are listening to Radio Olive.

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक डिबेट के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे निकलने के बाद जो है लोग बहुत बात कर रहे हैं टॉम हॉलैंड के बारे में, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बारे में। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कितना भी कुछ कहो, ओजी स्पाइडरमैन तो टॉबी मैग्वायर ही है। मैं भी यही मानता हूं, ठीक है। तो एक मैंने पोस्ट देखा था जहां पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन मूवी के फ्रेंचाइज के बारे में बोला था, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यूज किए गए हैं, जैसे कि ब्रांड न्यू डे, फार फ्रॉम होम, नो वे होम, होम कमिंग, ऐसे बहुत सारे नाम यूज किए थे, मगर टॉबी मैग्वायर का जो स्पाइडरमैन था, इट्स 1, 2, 3 खत्म, बस। और आप फार्मिंग इसे कहते हैं भाई। बट या मुझे सच बताऊं तो स्टोरी लाइन के हिसाब से भी अगर देखें तो टॉबी मैग्वायर का जो स्पाइडरमैन था वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरा था। अगर आप स्पाइडरमैन 1 देखो, स्पाइडरमैन 2 देखो, स्पाइडरमैन 3 देखो, वो हमेशा अपने किसी खास को खोता है। स्पाइडरमैन 1 में वो हैरी ऑसबॉर्न के फादर मिस्टर ऑसबॉर्न, जो उसके बहुत ही बढ़िया मेंटर थे, जो उन्हें बहुत पसंद करते थे, वो विलन बनते हैं, तो वो विलन को जरूर मारता है मगर किसी अपने को भी वहां पे खोजता है। सिमिलरली सेकेंड में डॉक्टर ऑक्टोपस जो थे वो उसके मेंटर थे, उसके प्रोफेसर थे, वो उस पर बहुत बिलीव करते थे, और फाइनली उसने उस विलन को जरूर ही किया मगर डॉक्टर ऑटो को भी खोया। और थर्ड में हैरी ऑसबॉर्न जो है, जो उसका दोस्त, जो बीच में थोड़ा विलन बन जाता है, बट जब उनके बीच में चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, वेनम ले लेता है हैरी की जान। सोच के देखिए भाई, इतना लॉस बेचारे टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन को सहना पड़ा। तो वो स्टोरी टेलिंग भी बहुत अलग थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब अभी भी मैं स्पाइडरमैन 1, 2, 3 बैठ के देख सकता हूँ और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस फ्रेंचाइजी का। अगर आप ओजी स्पाइडरमैन के फैंस हैं तो जरा मुझे मैसेज कीजिए 3311106 पर और बताइए मुझे। यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: Awesome।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ.
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं. कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले.
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है.
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: लगा और हो जा रिचार्ज.
0: Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक ही चीज मैं याद दिलाने के लिए आया हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो भाई क्या किया, सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे radioolive.qa सर्च कीजिए, पेज ओपन होगा तो अगर उसमें फॉलो दिख रहा है तो फॉलो कर दीजिए, एक ही बार बटन दबाना है आपको। और उसके साथ साथ कंटेंट को आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे पोस्ट के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, हमें सुनते हुए अभी के अभी स्टोरी डाल सकते हैं, हम स्टोरी को रीशेयर कर रहे हैं भाई। और यही बोलते हुए हम जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा।
2: बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बॉलीवुड के एनर्जेटिक और एजलेस अन्ना का बर्थडे भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रेडियो ऑलिव करता है सुनील शेट्टी को हैप्पी बर्थडे विश। आज सारा दिन सुनिए अन्ना के सुपरहिट गाने।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई गुड बाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं। पार्टी अभी बाकी है, पार्टी करने के लिए सिमरन आ जाएगी आपके साथ आपके इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने के लिए। तो यही बोलते हुए हम भी जरा निकलते हैं, और यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। और फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, और कहते रहिए जियो दंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो

होंगी आपके साथ, लेकिन ये लैला अकेले नहीं रहना चाहती है, चाहती है कि आप लोग भी मेरे को सुनो, और गाड़ी में, घर में, जहां पे भी सुन रहे हो, और आपके फोन में भी एप्लीकेशन ऑन होनी चाहिए अगर आप इन केस गाड़ी से बाहर निकल रहे हो या फिर घर से बाहर निकल रहे हो, ठीक है? तो साथ साथ चलना चाहिए। और बताइए, पूरे दिन ने आपका साथ दिया कि नहीं दिया? कैसा रहा आपका आज का दिन? आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस मुझे भेज दीजिए 3311063 पर।

0: अल्काई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
1: हाय दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: Zabardast evening. Make your drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

आजकल उनकी वाइफ की जो स्टेटमेंट है गोविंदा को लेकर काफी ज्यादा वायरल जो है वो होती रहती है। मैं कह रही हूं सोनिया कितना की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। देखो यार, अगर इश्क की बात करें, मुझे पीनट बटर जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को पीनट बटर का स्वाद नहीं अच्छा लगता। लेकिन तीसरे तरह के लोग होते हैं जिनको पीनट बटर से फोबिया होता है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसे लोग होते हैं, इट्स वेरी रेयर, बट इनको ये फोबिया होता है, क्योंकि इनका फोबिया ये होता है कि इसका जो स्टिकी टेक्सचर है ना, उनके मुंह के अंदर जो रूफ है ना, उनके माउथ का जो रूफ है, उस पे चिपक जाएगा और चोक हो जाएगा, और वो ना तो ब्रीथ कर पाएंगे ना ही उसको स्वॉलो कर पाएंगे। सो ये अलग लेवल की एक रेयर फोबिया है जो कि होती है, जिसमें आपको पैनिक होता है पीनट बटर को देख के, एंजाइटी होती है, और आप जो है अपने, अगर आपके आसपास पीनट बटर होगा तो आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ऑफ कोर्स इसके लिए थेरेपी भी है, हर चीज के लिए थेरेपी होती है अगर आपको फोबिया रहता है किसी चीज का तो। लेकिन ये चीज मेरे लिए पहली बार मैंने सुनी है कि ठीक है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको पीनट बटर का स्वाद अच्छा नहीं लगता है ना, बट पीनट बटर का फोबिया, बेबी ये नया है यार। इनफैक्ट अगर मुझे पीनट बटर का कोई भी किसी चीज में फ्लेवर मिले, चाहे वो कुकीज में मिले या किसी भी चीज में मिले, मैं हमेशा वो चूज करूंगी यार, मुझे इतना पसंद है।

0: सो अभी जो कोई मुझे सुन रहे हैं, आप में से कोई है जिनको पीनट बटर का फोबिया, या फिर कोई ऐसा फोबिया जो कि आपको लगता है यार बाकी लोगों के लिए तो वियर्ड हो जाता है यार, 3311063 पर आप मुझे बता सकते हैं।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: भाई क्या गाना है यार ये, अमेजिंग, मजा आ गया यार। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना एक फोबिया के बारे में कि पीनट बटर से भी बहुत सारे लोगों को फोबिया होता है, और अगर आपको किसी चीज से फोबिया है तो आप मुझे बताओ।
1: सिमरन, गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग।
1: आप अभी पूछ रही थी ना कि आप किसी चीज का फोबिया है या इस तरह से, तो जिस तरह से पीनट बटर का था, तो मैं सोच रही थी कि मुझे तो बारिश से भी फोबिया है। मैं तो कभी भीगती भी नहीं और जाती भी नहीं बारिश के अंदर कभी भी, क्योंकि चिपचिपाहट महसूस होती है और गीलापन महसूस होता है, उससे बहुत उलझन होती है, तो मुझे इस चीज का फोबिया है। थैंक यू
0: सो मच फॉर शेयरिंग। I doubt इसको फोबिया हम बोलेंगे, ये लाइक डिसलाइक आ जाता है कि आपको बड़ा खिचखिच मचती है यार अगर आप बारिश में गीले हो जाओ। मैं आपको बताती हूँ, जिनको रेन का फोबिया रहता है ना, उनका क्या होता है कि उनको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, वो शेक करने लग जाते हैं, पसीना आने लग जाता है, दे फील डिजी, सो और उनका मन होता है कि भाग जाओ यहां से, कहीं छुप जाओ। सो उनको ये वेदर जो है बहुत ज्यादा स्केयर करता है उनको, मतलब एक्सट्रीम लेवल का जो है वो पैनिक फील करते हैं वो लोग। सो इसको एक्चुअली फोबिया जो है वो बोलते हैं। जो आपका है वो ऐसा है कि ठीक है यार मेरे को नहीं पसंद है, मेरे को बारिश में जाना है, जैसे किसी को पहाड़ों में जाना नहीं पसंद है, किसी को पानी में जाना पसंद नहीं है। सो ये अलग लेवल का है, जो कि उनको लाइटनिंग से बहुत ज्यादा डर होता है, मतलब वो उनको होता है कि भाई फ्लड का फियर होता है, बहुत सारे फोबियाज हैं, लेकिन उसमें ये खतरनाक होते हैं, लेकिन अलग ही होते होंगे यार वो लोग, है ना, जिनको ये बारिश का या ऐसी चीजों का फोबिया जो है वो होता है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज बताने वाली थी, फोबिया के बीच में रह गई है। सो हम सब ने अपने बचपन में मुझे लगता है कि खेली एक गेम जिसका नाम है लूडो। सो कल मैंने वो लूडो गेम खरीदी और भाई जो मेमोरीज जो बचपन वाली मेरे दिमाग में आ गई, और आज हमने ऑफिस में वो लूडो खेली यार, मजा आ गया। की आवाज बाहर की गर्मी को ऐसा फील करवाएगी कि यार एक ठंडी हवा का

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
2: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

ट्रैक यार, उड़ता पंजाब से। जब से मैंने ये 16 साल के बच्चे के बारे में पढ़ा है यार, मुझे ना मुझे समझ लग रही है मैं किस तरह से रिएक्ट करूं, ये बच्चा कैसे ही जीता होगा यार। इकबाल शेख नाम का ये बच्चा है। सो उसका ये हाल है कि मतलब ऑलमोस्ट 5 साल जो है वो ये लड़का जो है हफ्ते में 4 से 5 दिन वे पानी में ही रहता है। मतलब अगर ये पानी से बाहर बच्चा निकलता है ना तो उसकी बॉडी जो है वो जलने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है। सो या अब ये बच्चा जो है ज्यादातर अपना टाइम जो है वो पानी के अंदर ही बिताता है और पानी के अंदर ही बैठ के वो खाता है। अब जब लगातार वो पानी में वैसा बैठा रहेगा तो उसकी बॉडी भी रिएक्ट करती है, बॉडी पील होने लग जाती है। बट अगर वो पानी से बाहर निकलता है तो दिक्कत उसको अलग होती है। भाई साहब ये अलग लेवल की कुछ लोगों की जिंदगी चलती है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी से थोड़ी सी शिकायत लगे ना कभी, तो इस बच्चे के बारे में भी सोच लेना यार, इतना बुरा लग रहा है यार मुझे। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कर, कहते रहो जियो बिंदास। बाहर तो बारिश हो नहीं रही है, अपने एरिया में तो होती नहीं है ना, कतर में तो हो ही जाती है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ भी हो जाती है, जरूरत हमको है यार। तो ये गाना बारिश वाला आपके और हमारे लिए है, फील ले लीजिए, बारिश नहीं आ रही है तो 2-1 एंड गो।

राइट, 6:07 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 41 डिग्री सेल्सियस. मिनिमम टेम्परेचर 35 है और मैक्सिमम आज का था 45 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 46% है. कंपैरेटिवली कम है आज कल के हिसाब से. विंड जो है 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और ये बोल रहे हैं कि अभी फाइनल फेज जो है वो 13 दिन गर्मी वाले वो स्टार्ट हो गए हैं एंड उसके बाद जो है वो शाम में मौसम माइल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. ऐसी खबरें मुझे बड़ी अच्छी लगती है यार.

0: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Hi, this is Air Rahman. Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
3: Jio Bindaas.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: I'm in number one. Radio Olive.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.
10: Just

बुर्ज खलीफा सिमरन 6:21 और 7 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं।

0: गाने आप लोगों के लिए चला रही हूँ, लेकिन क्या है आज
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है। और बताओ क्या हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में। ये माचा ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी। आई लव पैनकेक्स, आई लव कोसो, लेकिन ना मैंने एक वीडियो देखी जिसमें अपने कदर में ही माचा पैनकेक्स, माचा कोसो जो है वो वायरल हो रहा है। माचा ड्रिंक में समझती हूँ लोगों का प्यार है। मैं थोड़े दिन पहले एक ग्रुप में गई थी और वहां पर मेरे लिए किसी ने बिना बोले माचा ऑर्डर कर दिया। आई एम लाइक, कैसे तुमको लगा कि मैं माचा पी लूंगी? पता नहीं कैसे लग जाता लोगों को, लेकिन मैं माचा नहीं पीती हूँ। ठीक है, सो ठीक है, माचा ड्रिंक तक तो ठीक था, लेकिन ये माचा पैनकेक और माचा कोसो कौन खा रहा है यार? कौन कर रहा है इन सारी चीजों को वायरल? मेरे दिल में दर्द होता है जबरदस्त वाला यार। कौन कौन है माचा लवर यहाँ पे? नहीं, आई एम नॉट जजिंग यू। सुनते रहो रेडियो ऑलिव पर, कहते रहो चाहिए अमित दास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
4: Awesome।

0: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
1: क्या, कैसे?
0: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
1: रोज मिलता है क्या?
0: हाँ रोज मिलता है।
1: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵਧਾਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? सो आपने वो गाना सुना है वावा वूम, तो वावा वूम हम गा देते हैं, लेकिन उसका मतलब शायद आपको नहीं पता। ये एक जेंजी स्लैंग है जिसको आप बोल देते हो लाइक बींग वेरी अट्रैक्टिव, एक्साइटिंग, ग्लैमरस और एनर्जेटिक, वाव फैक्टर टाइप्स, इसके लिए हम वावा वूम जो है वो वर्ड यूज करते हैं। फन एक्सप्रेशन है ये एक तरीके का। सो यार 6:32, 4 स्टूडियो की घड़ी पे, और ये टाइम कहता है कि लोग सुनते रहो रेडियो ऑलिव करके, इधर हो जियो फिनास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: हाँ जी सिमरन कौर तुहाडे नाल 651 स्टूडियो की घड़ी पे हो जाएंगे कमन एक बंदी यू नो उसको ऑफिस में जब वो जाती थी तो उसके बालों का कलर जो था वो पिंक था ओके अब उन्होंने बोला कि भाई हमारे ऑफिस की पॉलिसी के हिसाब से आप पिंक कलर के बाल जो है वो नहीं कर सकते ये रूल्स के खिलाफ है। अब लड़के को गुस्सा आया कि भाई ये मेरे बाल हैं आप पिंक कलर के बालों से आपको क्या दिक्कत है। लेकिन उस लड़की ने क्या सोचा कि भाई अब आपको मैं पिंक कलर के बाल जो है वो ना तो चेंज करवाने वाली हूँ ना मैं काटने वाली हूँ जो भी नहीं करने वाली। तो उसने उसके बजाय पता क्या किया उसने अलग अलग तरीके के वियर्ड वियर्ड विग्स जो है ऑफिस में पहनने स्टार्ट कर दिए काले बालों वाले। मैं फोटोज देख रही हूँ इतने ज्यादा फनी लग रहे हैं। अब बेचारे ऑफिस वाले भी कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो पिंक बाल तो है नहीं है लेकिन वियर्ड वाले विग्स है जो कि काफी ज्यादा क्रीपी है यार। सिमरन गौर आपके साथ जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, guys.

0: बहुत सारा दर्द है, लेकिन आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं,
1: जाती हूँ मैं
2: जल्दी है क्या
1: घर के जिया
2: वो क्यों भला।
0: बिल्कुल, फिल्म का नाम है बाजीगर। सो अक्षय कुमार को लीड रोल के लिए जो था वो ऑफर आया था 1991 में, लेकिन अक्षय कुमार ने बोला कि नहीं यार, वो नहीं करने वाले हैं इस फिल्म में काम। लेस सलमान खान को भी इस फिल्म के बारे में जो था पता लगा और उनको भी ऑफर किया गया था, लेकिन सलमान खान ने बोला कि नहीं यार, इस फिल्म में जो कैरेक्टर है वो मुझे इतना सही नहीं लग रहा है कि मेरे लिए बढ़िया होगा। क्योंकि इसमें आपको पता है कि बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान का एक अलग कैरेक्टर रहता, विलन बने होते हैं यार वो, है ना। तो उनके पापा सलीम खान ने भी बोला था कि भाई तेरे को इस तरह के रोल में लोग जो है वो पसंद नहीं करने वाले। सो बात करें लीड फीमेल की, है ना। सो जूही चावला को भी इसका ऑफर आया था, माधुरी दीक्षित को भी इसका ऑफर आया था, लेकिन फाइनली जो था प्रिया के रोल के लिए काजोल को जो था वो सिलेक्ट कर लिया गया था। अब इस फिल्म के बारे में मैं आपको और भी बातें बताऊंगी। सुनते रहिए रेडियो ओलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Hi, main hoon Vivek Anand Oberoi. You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Guy ke saath CNG ho ya fuel type buses 64 seater ya compact 26 seater paiye behtar mileage aur maximum comfort Carmel Group ke saath ab safar without suffer visit Carmel Group now
1: iske swag pe munde jaate hain dil haar ke ladki ko pasand hai kadak chai malai maar ke भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
4: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: आंखें बंद करके सुनोगे ना ये गाना, खुले आसमान दे थल्ले बड़ी चंगी फील आंदी है यार। एकदम ऐसा होता है कि पहाड़ ही पहाड़ है, ग्रीनरी है, बस बादल आने वाले हैं और बारिश होने वाली है।
1: मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना।
0: और इस गाने की टोटली फील है, लगे शादी वाली फील जो है वो आने लग जाती है, लेकिन ये वाली फील को बहुत सारे लोग जो है दबा देते हैं।
2: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ,
0: और वो है हील वाली फील। हील वाली फील जो है ना, लोगों को लगता है कि अरे भाई कोई बात नहीं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे नहीं, किसी को कहेंगे नहीं, ये चीज अपने आप चली जाएगी। देखो यार, ये जो हीलिंग है ना, वो जब तक ये चीजें आपको परेशान कर रही हैं, वो आप निकालोगे नहीं, बोलोगे नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा रो नहीं लोगे, तब तक ये चीजें जो है वो नहीं निकलने वाली है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि फॉर एग्जांपल जब आप गुस्सा अपने अंदर दबाते हो, मान लीजिए कि आपको किसी पे किसी बात को लेकर गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत तो नहीं होते उस टाइम पे। शांत हो जाओगे फॉर द टाइम बीइंग, जब आप अकेले में होगे तो आपको फिर उसी चीज के बारे में आप सोचते रहोगे। ये सोचना कब कम होगा? जब आप वो चीज बाहर बोल दोगे। मैं मानती हूं कि एक चुप ते सौ सुख होता है, लेकिन जहां पर आपकी हीलिंग जो है वहां वो रुक गई है और आपको वो चीज परेशान कर रही है, क्योंकि वो इंसान आपके बेहद करीब है और आपको वो चीज बार बार परेशान कर रही है, तो उसके सामने वो खुल के चीज बोल दो, ताकि इस तरह से रिश्तों में भी कड़वाहट जो है वो आ जाती है और सामने वाला उस चीज को बड़ा सही से लेगा, अगर वो सही इंसान है तो। क्योंकि दिक्कत हो जाती है यार, पहले लोग फिर ये बोलते थे, अरे तूने पहले नहीं बोला, तो आप बोल रहे हैं ना यार, ताकि आपकी हील में आपको फील आने लगे कि हाँ आई एम हीलिंग। वाओ सिमरन कौर, कैसी कैसी बातें करने लगी हो तुम। वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। 2-1 एंड गो।

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

मतलब फील आई है यार, और फील तो आप लोगों की मैसेजेस में भी है जो कि आप भेज रहे हैं। इस गेम का नाम नेम गेम ही है और ये आपके नाम की ही बात हो रही है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अभी के अभी रेडियो पे ले दूं, तो रेडियो पे आपको अपना नाम जो है मुझे भेजना पड़ेगा। मैं मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको बता रही हूँ, डबल एक मिनट चेयर पीछे कर लू यार मैं। ओके, 3311063 पर मैंने अपनी चेयर जो है अब घुमा ली है और व्हाट्सएप के सामने जो है मैं देख रही हूँ। अच्छा, मैं मैसेज ओपन नहीं करूंगी दोस्त, आप समझ रहे हो, मैं सिर्फ स्क्रीन पे नाम देखूंगी। अगर आप 5-6 नाम लिख रहे हो तो प्लीज एक एक करके लिखिएगा, ताकि मैं मैसेज ओपन ना करूं तो फिर आपका मैसेज नहीं दिखेगा मेरे को, ठीक है। 3311063 पर आयत, फातिमा, नदीम, धोज, विक्रम, जुनैद, वाजिद, शेख, फैजल जी, सलमान, हुमायूं, राजू, आसमा, साजिद, बासित, फवाद, क्विकली, कोको, नाम फटाफट से लिखे भेजो 3311063 पर। आलिया जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कामरान जी, थैंक यू सो मच। नीजू जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है क्योंकि आज मैंने बहुत सारी बात कर ली है। हमद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अंजू जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कामरान जी, अबरार जी, अतुल जी, बिलाल जी, इमरान जी, संधू जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और सौजन्या जी, थैंक यू सो मच। आलिया, मैं ऑलरेडी आपका नाम ले चुकी हूँ डार्लिंग, क्या आप नहीं सुन रही हैं। नोआ जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आयत जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। लामिया अख्तर, मुनी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। दनियाल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। यम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और सूरज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। जुनैद जी, थैंक यू सो मच। नदीम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। नीबू जी, थैंक यू सो मच आपके। क्विकली नाम लिखो यार। तीरथ प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। 3311063 पर। वाह, चुटकियों के साथ तो एकदम वाइब हो गई। फुरकान अली जी, नितिन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया, हम्पी भी का भी नाम ले लिया, अब आप थैंक यू लिख सकते हो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना सकते हो। आशिक शेख जी, थैंक यू सो मच। मनोजी जी, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए।

आगे तेरे पीछे बावरा समन बावरा समन। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: Hi, mehu Divya Datta. And you're listening to Radio Olive Gio Bendaz.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

गाना है यार। सिमरन कौर है 8:18 और 42 सेकंड हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी पे बहुत ही प्यारा गाना आने वाला है यार।

0: अब गुजारिश है आपसे कि चलो खेलते हैं
1: रेडियो ऑलिव पर।
2: बहुत बढ़िया।
0: So, अगर आप चाहते हैं कि आप बॉलीवुड की नॉलेज खुद की चेक करें तो मैं करवा देती हूँ। बहुत मुश्किल तो नहीं है इस गाने को पहचानना, लेकिन प्लीज ये मत करिएगा कल की तरह। आप लोग लिख के भेज देते हो, वॉइस नोट भेजना है एकदम एनर्जी के साथ सिमरन कौर वाली। हे सिमरन, अपना नाम बताइए और गाना गा के बताइए कि ये कौन सा गाना है। भेज दीजिए 3311063 पर। एक बार फिर से सुना रही हूँ। फटाफट से वॉइस नोट भेज दो।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: रुक जाओ यार, फीलिंग वैसे आ जाती है यार, पर कोई भी गाना सुनो ना, मतलब आप उस फीलिंग में ढल जाते हो यार। 8:30 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ऑलिव पर।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: एक चुटकी सॉन्ग में ये चुटकी भर सॉन्ग आपको सुनाया था। और देखते हैं कि आप में से कितने लोगों ने पहचाना है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने पहचाना है।
3: तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम।
0: ओके।
3: तेरे नाम मूवी सलमान खान।
0: ओके, मतलब आप अपना नाम ही बता देते, हेलो सिमरन बोल देते, मतलब क्या बिल विल आ रहा है क्या आपका?
4: हेलो सिमरन, हाँ कैसे हो, ठीक हो?
0: बहुत बढ़िया।
4: ये गाना है सलमान खान का, अपना तेरे नाम हमने किया जीवन अपना सारा सनम, हाँ प्यार बहुत करते हैं तुमसे, हाँ
0: ओके हाँ।
5: हे सिमरन, वेरी गुड इवनिंग, मेरा नाम है विनायक।
0: जी
5: जी हाँ, आपका बिग बिग बिग फैन विनायक।
0: थैंक यू सो मच।
5: आज ये आपने जो ट्यून दिया है गेस्ट करने के लिए, ये ट्यून है हमारे प्यारे सल्लू।

0: दर्द।
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच रेडियो ऑलिव, एंड आज की शाम मस्त हो, मजेदार हो, एंड जियो बिंदास रेडियो।
0: जियो बिंदास जी, बिल्कुल गाना यही है। विनायक जी का मन ही नहीं कर रहा था कि वो वॉइस नोट बंद करे, ऐसा लग रहा था कि दिल कर रहा है उनसे उनका कि भाई वॉइस नोट चलता ही रहे। बहुत ही प्यारा गाना, और उसके साथ साथ अब ये जो रात है इस टाइम पे आपकी गाड़ी में अगर ये गाना बज गया तो आई नो यू वेलकम।

0: हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

ये दूरियां तो अब मैं मिटा दी हूँ कि बाकी की दूरियां अब कल जो है वो मिटाऊंगी, क्योंकि अब सिमरन कौर के कल दीवाने का टाइम आ चुका है। कल शाम को मिलूंगी 5 बजे। और एक खुशखबरी ये है कि कल वेंसडे है, तो अपन वीकेंड के नजदीक बहुत ज्यादा आ जाएंगे। रात को आपको अच्छी सी नींद आ जाए, इसीलिए आपको ये वेंसडे वाली जो है वो मोटिवेशन दे रही हूँ, ठीक है। सो जबरदस्त इवनिंग्स में कल मिलते हैं। ओवरथिंकिंग मत करिएगा, ठीक है। खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बस खुश रहो यार। आज अगर मैं पूरा ना बोलूं तो चलेगा? खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कीजिए. सेम प्लेस सेम रोड सेम कैफे. एक बार दिन में जाइए और फिर वही जगह पर रात को, मतलब जब ऑफिस से फ्री हो जाए और अब लगे कि यार ये टाइम जो है ये पर्सनल टाइम है, तब जाइए. आपको लगेगा जैसे सिटी ही बदल गई है. डे टाइम कतर हैज इट्स ओन रिदम, वर्क ट्रैफिक अपॉइंटमेंट डेडलाइंस, लेकिन सनसेट के बाद लोग जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो मतलब जब ये टाइम आता है रात को, जब मुझे ऐसा लगता है कि अब बज चुके हैं 9 और आपकी और मेरी बातें करने की बारी आ गई है, तब मुझे सुकून मिलता है. सो बात कर रहे थे डे टाइम और नाइट टाइम की. सो फैमिलीज बाहर निकलती हैं रात को, ठीक है, लोग स्लो डाउन हो जाते हैं, फ्रेंड्स कॉफ़ी के लिए मिलते हैं, डिनर प्लान स्टार्ट होते हैं और वो लेट नाइट ड्राइव्स जिसमें डेस्टिनेशन से ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं. शायद इसीलिए दुनिया के बहुत सारे ऐसे सिटीज़ का रियल पर्सनैलिटी रात में दिखता है. दिन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखती हैं, रात में लोग दिखते हैं. और कतर में रहने की एक खूबसूरत बात भी यही है कि रात सिर्फ दिन का एंड नहीं होती, कभी कभी वो आपका एक्चुअल सोशल लाइफ स्टार्ट का टाइम होता है. सो आप बताइए कि आपको कतर का कौन सा वर्जन ज़्यादा पसंद है, बिजी डे टाइम दोहा या फिर लाइट्स के नीचे वाला दोहा जो आफ्टर 9 स्टार्ट होता है और वहाँ पर आप और मैं मिल के अपने अपने दोस्तों से अपने अपने फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान, नंबर है सेम 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आज की कहानी थोड़ी सी अनयूजुअल है। हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पर क्रिएटर बनना है तो फेस दिखाना पड़ता है। अगर आप यू नो इंस्टाग्राम चलाना चाहते हो, यूट्यूब पर अपना अकाउंट बनाते हो तो फोटोज, वीडियोस, पर्सनल ब्रांड। लेकिन आर्ट की दुनिया में कुछ क्रिएटर्स ने एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट चूज किया। उन्होंने कहा मेरा फेस नहीं, मेरा वर्क देखो। एक एनोनिमस आर्टिस्ट की पेंटिंग वायरल होती है, लोग उसके मीनिंग पर डिस्कशंस करते हैं, मीडिया उसके बारे में पूरी थ्योरीज बनाती है और आर्टिस्ट स्टिल अनोनिमस। मुझे ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आज हम कभी कभी अपनी अचीवमेंट से ज़्यादा उसके अनाउंसमेंट पर फोकस करते हैं, पोस्ट कब करना है, कैप्शन क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। बट इमेजिन, मतलब क्रिएटिंग समथिंग इज़ सो गुड कि उस क्रिएटर की ज़रूरत ही ना पड़े। बस आर्ट ही आपका जो है इतना अच्छा होना चाहिए कि हर कोई देखता रह जाए। सो ऐसे मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा जो अपना फेस शो नहीं करते, मतलब इतना अच्छा काम करते हैं कि दे आर फेमस राइट नाउ। आपके नाम की वैल्यू आपके नाम से नहीं आती, ये काम खुद अपनी आइडेंटिटी जो है वो बना ही लेता है। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। 3311106 इज माई नंबर। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

कभी ड्राइविंग करते हुए कोई पुराना गाना अचानक बज जाता है और एक सेकंड में आप अपने प्रेजेंट से सीधे वापस स्कूल टाइम या कॉलेज की कैंटीन या किसी पुराने दोस्त के साथ पहुंच जाते हो। फनी थिंग इज, आपको सिर्फ गाना याद नहीं आता, उस वक्त की स्मेल, वेदर, पर्सन, फीलिंग, सब कुछ एक साथ याद आ जाता है। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट म्यूजिक हैज़ अ पावरफुल कनेक्शन विद ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज और इसीलिए जो स्ट्रांगली इमोशंस हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी एक गाना जो है वो गूगल फोटोज से भी बेटर मेमोरी स्ट्रांग बना जाता है और शायद इसीलिए हम कुछ गाने को कभी डिलीट नहीं कर पाते। इवन आज भी जब मैं रेडियो पे गाने प्ले करती हूँ तो मुझे लगता है कि हर गाने में कुछ ना कुछ याद है, नॉट बिकॉज दे आर स्टिल आर फेवरेट बट बिकॉज दे आर कैरिंग अ वर्जन ऑफ अस। आपका वो कौन सा गाना है जो सुनते ही आप सीधे किसी पुराने चैप्टर में चले जाते हो या आपको लगता है कि यार ये गाना ना एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। नंबर सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

I love. Good evening. You are listening Radio Ola 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai, of course, Midnight Lounge. Ek chota sa scene imagine kijiye. Someone says something irritating. आपके दिमाग में आंसर रेडी है, बस बोलने ही वाले हैं, और फिर 3 seconds आप रुक जाते हो और सडनली आपको रियलाइज होता है, एक्चुअली मुझे ये बोलना ही नहीं चाहिए. दैट टाइनी पॉज कैन कम्प्लीटली चेंज अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. रिएक्शन जो है वो बहुत इंस्टेंट होता है और रिस्पॉन्स थोड़ा सोच कर आता है. और आज के टाइम में जहाँ मैसेज का रिप्लाई 10 सेकंड में चाहिए, कमेंट का रिएक्शन इंस्टेंटली आ जाता है. मे बी पेशेंस इटसेल्फ हैज अ बिकम कम्युनिकेशन स्किल. हर बात का आंसर देना जरूरी नहीं होता और हर आर्ग्यूमेंट जीतना भी जरूरी नहीं होता. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपको अगर किसी एक सिचुएशन में सिर्फ 3 सेकंड पॉज लेने की आदत हो जाए तो वो सिचुएशन क्या होगी. बाय द वे, ये ऑफिस में बहुत काम आता है, क्योंकि समटाइम्स आपके कलीग्स, आपके यू नो आसपास के लोग आपको कुछ कह रहे होते हैं और आप जवाब दे देते हो तुरंत, और बाद में आपको लगता है कि यार ये ठीक नहीं हुआ, यू नो इसकी वजह से कॉन्वर्सेशन और हीट हो गया. सो यू शुड पॉज फॉर 3 सेकंड ओनली और उसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: ये है मिडनाइट लाउंज.

हम म्यूजियम का नाम सुनते ही क्या इमेजिन करते हैं? पेंटिंग्स, कुछ पुराने स्कल्पचर्स, रॉयल ज्वेलरी या दुनिया में जितने भी म्यूजियम हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कोई भी प्रिजर्व कर लेता है, जैसे कि कुछ पुराने कपड़े जो कभी किसी के लिए बिल्कुल ऑर्डिनरी थे, पुराने हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ओल्ड एडवर्टाइजमेंट्स, टॉयज, लेटर्स, एवरीडे टेक्नोलॉजी। और मुझे इसमें एक बहुत ही खूबसूरत थॉट मिलता है, हिस्ट्री हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों से नहीं बनती। कभी कभी एक पुराना स्कूल बैग, एक हैंड रिटन लेटर या एक ओल्ड टेलीफोन किसी जनरेशन की पूरी स्टोरी बता सकता है। अब आप सोचिए, आज जो चीज़ हम एक्चुअली थ्रो अवे कर रहे हैं, मे बी 50 साल बाद समवन विल लुक एट इट एंड से, ओह, दिस इज हाउ पीपल लिव्ड। सो आपके घर में ऐसी कौन सी ऑर्डिनरी चीज़ है जो आप कभी थ्रो नहीं करेंगे, बिकॉज इट कैरीज अ मेमोरी। वैसे ऐसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मम्मी की शादी की चीज़ें, शादी का वो बक्सा आज तक अलमारी के ऊपर रखा रहता है और इतने सालों बाद भी वो इतना ट्रेंडिंग और एस्थेटिक लगता है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311-1063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3।

सर, शावर में शैम्पू करते वक्त कभी सडनली लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट थॉट आया है? वेट, मुझे पता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, या फिर कम्प्लीटली रैंडम थॉट, हमने ये करियर चूज क्यों किया? अगर मैं 10 साल पहले ये डिसाइड कर लेती तो क्या होता? व्हाई डज द ब्रेन डू दिस? मतलब बार बार चीजें ऐसे रिपीट होती हैं, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मुझे ये पहले पता होता। बिकॉज रिपीटेटिव एक्टिविटीज जो हैं, वॉकिंग, ड्राइविंग और कुछ ऐसे टाइम पर ही आती हैं जो आप मोनोटोनस काम करते हो, जिसमें अब आपको आदत पड़ चुकी है, आपको मेहनत नहीं लग रही, दिमाग नहीं लग रहा। सो ये जो चीज़ें हैं ये डिमांड नहीं करती आपके कॉन्शियस अटेंशन को, इसीलिए आपको जो थॉट्स हैं वो भी इसी टाइम आते हैं। एंड व्हेन द माइंड गेट्स कम यू नो फ्री टाइम, और जैसे कुछ उसको खाली टाइम मिल जाता है, इट स्टार्ट्स वंडरिंग, मतलब उसको घूमना फिरना अच्छा लगने लगता है। समटाइम्स दैट यू नो जो घूमने फिरने वाला कनेक्ट आइडिया है, वी वर नॉट डेलिबरेटली ट्राइंग टू कनेक्ट, एक्चुअली हम पुरानी चीज़ों को ना याद करना चाहते हैं ना उसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट वो अपने आप हो जाती। मे बी दैट्स वाई बोर्डम इज एंड ऑलवेज द एनिमी, अ लिटिल एम्प्टी स्पेस इज वेयर द ब्रेन स्टार्ट्स प्लेइंग, बस वही है एनिमी। सो नेक्स्ट टाइम यू आर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग, सो इमिडिएटली कुछ अपना फ़ोन या कुछ चीज़ें उठाइए और कुछ ऐसा कीजिए जहाँ पर आपको लगे कि ये मेरे टाइम की वैल्यू है। सो मे बी लेट योर ब्रेन यू नो वॉन्डर फॉर अ वाइल, बट फिर भी ज़्यादा नहीं। आपके बेस्ट रैंडम थॉट्स कहाँ पर आते हैं? ड्राइविंग करते टाइम, या सोने से पहले, या फिर जब आप डूम स्क्रोलिंग करते हो तब? सो बताइए मुझे। और नंबर है सेम 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

So, एक टाइम हुआ करता था जब मूवी ट्रेलर देखने से पहले हम उसकी आवाज पहचान लेते थे, डीप वॉइस, ड्रामेटिक पॉजेस और एक ऐसी कहानी जो सब कुछ बदल देती थी। सो उनका काम ना आसान नहीं होता था, उन्हें पूरी फिल्म एक्सप्लेन करनी होती थी, फिल्म का मूड बचाना होता था। आपने मूवी देखी भी होगी बट दैट वॉइस मेड यू फील कि आई नीड टू वॉच दिस। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारी वॉइसेस जो हैं दे बिकम आइकॉनिक विदाउट एवर बिकमिंग सेलिब्रिटीज देमसेल्फ। सो पहले जब AI वॉइसेस नहीं थी, ये डिजिटल ट्रेलर्स और प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो थे वही ये यू नो मूवी को पूरा एक्सप्लेन करते थे। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो आइकॉनिक बन गई बिना सेलिब्रिटी बने। समटाइम्स अ पर्सन क्रिएटिंग द एक्साइटमेंट्स यू नो डजंट गेट द स्टैंड इन द स्पॉटलाइट। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हर सक्सेस स्टोरी के सामने एक इनविजिबल वॉइस होती है, टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, मेंटोर, जिन्हें आपको यू नो देखना होता है, उन्होंने आपको हमेशा पुश किया होता है लाइफ में, लेकिन क्रेडिट उन्हें कभी नहीं मिलता। ना हम पेरेंट्स को कोई क्रेडिट देते हैं, ना दोस्तों को, ना किसी मेंटोर को। सो आपकी लाइफ का वो इनविजिबल जो वॉइस है वो क्या है, कौन है एक्चुअली? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
0: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

Very good evening. You are listening Radio All of 106.3 FM. This is me, Muskan, with your show ka naam hai Yes Midnight Lounge. This is the time jab mujhe aapse kehna padta hai ki show ko end karne se pehle ek aur aakhri baat kar lete hain aaj ke din ki. So humne life ko na thoda complicated bana rakha hai. Every weekend should be memorable. Every holiday should be Instagram worthy. Every birthday should be special. Every dinner should have photographs. But imagine जहाँ पर आपने काम किया, घर आए, अच्छा खाना खाया, किसी अपने से बात की, थोड़ा से अच्छे गाने सुने, मूवी देखी और बस, nothing extraordinary happened. अब इससे क्या बोरिंग लाइफ कहोगे? Maybe नहीं, maybe that's peace. क्योंकि जब सब कुछ बहुत ही exciting चल रहा होता है, excitement itself become exhausting. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है. Sometimes the most beautiful chapter of life is the one where nothing went wrong. ना drama, ना crisis, ना कोई बड़े achievement, just a normal day. And people you love, वो आपके साथ हैं before you sleep. So don't ask yourself only कि आज मैंने क्या achieve किया. पूछिए कि आज मुझे सुकून कब मिला. And maybe that's the enough for the day. अभी के लिए I have to say कि मुझे अब से कहना होगा कि मुझे जाना है. Good night. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव पर सुपर हिट गाने. कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड.

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: बापुआ गायन तो जबरदस्त हिट छे।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.